0: खाती हला हेतलियानी हम आला थले मेले की खाती हाले हम आला थले आले खाती हला हे के थलिया मेला बाले वेले लो असुते बाला खाना रवानी बाहे मेने ले थे खाती लाले सोए ना वतल दिए ना असुते बाला येशु स्वांस के नाम में भले आओ
1: वेले मा खाती दा वे तेरे वे
0: ई हमला के दियाले हमा तेरे
1: वे दे दे रो वाती दा हालेलुया
0: केतेलिया माला माती हाना हेले केतेली हा मेले मा थिलिया ले ओबन सुति देवा स्वामी इन वहांस ओबान सी उदाउ करन ने किने केनाट

0: अपविश्वास करना भी रहस्य प्रकाश कर्म।
1: स्वामी वंश्य कुतो सेक, स्वामी वंश्य उतानु सेक, स्वामिनी वंश्य नवत वडिन सेक।
0: एहिन प्यानिनी उन्वांसिगे मरण्यात् उत्तान्यात् सीपत् कर्मिन् जीवनदायक फूप्यात् गैलवीम दायक कुशलानात् अपि ओबट पुद करमु। ओबहम सिटिमिन ओबट सेवे करन्नट अपसुदुस।

याज्ञा करामः। सर्वबलधारियो अनाति अनंतो दिव्येनि मोक्षांपन मातावन कान्यमार्यतुमान्गे गतहा प्राणय ओबिगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक् वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद। अप सतुटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसु मनव। මේ කී දේ අපගේ ස්වාමී වූ ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. ආමෙන්.